तो जो नहीं कब रोंदे, औखे बेले बनी तो जो नहीं कब रोंदे, औखे बेले बनी तो जो नहीं कब रोंदे, हां कब रोंदे।

0: मन विच सोचदे ने भी आपां ओ जगह देखिए
1: कई बात एको सियाने
0: इसे तरह के सियाने ने होर गल कही
1: पांचे सरजो गुरु बनाए
0: कहते अमृतसर दी धरती ते जेडे पांच सरोवर गुरु पातशाह जी ने बनाए ने अमृत सरोवर है उस तो बिना रामसर सरोवर नाल दी नाल बिबेक सर संतोख सर कौल सर ये पांच सरोवर अमृतसर दी धरती ते

फिरत पर आया परिया तो संडाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए सो कहो टल गुरु सेविया एन सहज सुभाए।

कर पहला जब दे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरे हीरे रतन नाम हर बसिया गुरु हाथ धरियो मेरे माता जन्म जन्म के गिलविख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाता मेरे हीर रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरे बाता जन्म जन्म के गिरविख दुख उतरे

0: गुरपुरै हर नाम दिडाया, बिन नामै जीवन बिथा, रहा बिन गुर मूड पै है मन का, ते मोह माया नित पाता। तिन साधु चरना सेवे कब हो, तिन सब जन्म अकाता। जिन साधु चरण साध भग सेवै, तिन सफल्यो जन्म सनाता। मो कौ कीजै दास दास दासन का, हर दया धार जगनाता। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंता। हम अंधले को गोरी अंचल दीजा, जन नानक चल है मिलनता। हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चल है मार्ग पंता। हम अंधले को गुरियां चल दीजा, जन नानक चल है मिलनता। वाहेगुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहेगुरु साहेब जी। सोट महला पंजवा, गुर का सब रुकवारी, चौकी चौगिरद हमारे। राम नाम मन लागा, जम लजाए कर भागा। प्रभ जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूर्ण पुरख विधाता। राव नानक प्रभ बनासी, ताकि सेवन बिरती जासी। अनद करे तेरे दासा, जा पूर्ण होई आसा। बिलाबल महला पांजेवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरण आई। जो गिरद हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया, जिन बणत बनाई। राम नाम औ खुद दिया।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही शंत महला पहला कर चौथा जिन किया तिन देखिया जग तंदड़े लाया दान तेरे घट चानना तन चंद दीपाया अंग 765।

जे को खाए काखन पाए ओह जाने जितिया मुह खाए आपे जाने आपे दे आख है सेप ए के ई के जिसनों बख्शे सिफत।

गावन पंडित पढ़ नरखी सर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतनो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे जोद महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर पंडा कर कर रखे तहारे सही तदनो गावे जोत पावन रते तेरे भगत रसाले

तंत्र तंत्रंग सदा सचिदानंद सर्वंग प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा बृद करता अधो उर्ध अर्धंग अगंग ओग हरता परम परम परमेश्वरंग पुरुषपालंग सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालंग अछेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्त स्तता मंग।

अगाध्य अबाध्य आनंदी स्वरूपे नमो सर्व मान्य समस्ती निधाने नमस्तुंग निर्नाथे नमस्तुंग परमाथे नमस्तुंगा गंजे नमस्तुंगा पंजे नमस्तुंगा काले नमस्तुंगा पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृश्यं नमो सर्वकृत्संग नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिज्जे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृद सदंग निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल छंद त्वय प्रसाद आदरूप अनाद मूरत जौन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अपेव आदि उधार सर्व पारक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरख उदार मूरत अजोन आदि सेख देह स्वर न पेश जा

एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। देव भेव न जान ही जे वेद और कतेव, रूप रंग न जात पात सो जान ई केह जेव। तात मात न जात जाकर जन्म मरण विहीन, चकर बकर फिर चतर चक मान ई पुरतीन। लोक चौदह के विखै जग जाप ही जेह जाप, आद देव अनाद मूर्त थाप्यो सबै जेह थाप। परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार, सर्व विश्वरचियो स्वयं पवगण भंजन हार। कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख अदेस, धर्म धाम सो परम रहत भूत अलख अपेस। अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम। आप रूप अमीक अनुस्तत एक पुरख अवधूत, गर्भ गंजन सर्व भंजन आदरूप असूत। अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार। सर्व गंता सर्व हंता सर्व तेन पीख, सर्व शास्त्र न जान ही जे रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कह नेत भागत नित, कोट सिमृत प्राण शास्त्र न आव ही बहु चित। मद पार छंद त्वे प्रसाद, गुण गण उदार महिमा अपार। आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश, निस्दिन अनास आजान बाहु सहान साहु। राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल। अनुभूत अंग आबा अपंग गत मित अपार, गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निरपय निकाम। अतदुत प्रचंड मित गत अखंड, अलस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अनरंड वाढ्य। चाचरी छंद त्वय प्रसाद,

तव प्रसाद कथति किया छज देसा किया पिज पेसा किया गंज कर्म किया पंज परम किया पिज लोक किया दत सोक किया अवधूत वर्ण के वे भूत करण कि राजंग प्रभा है कि धर्मंग तुजा है कि अशोक वर्ण है कि सर्वा पर्ण है कि जगतंग कृति है कि शत्रंग क्षत्रि है कि ब्रह्मंग स्वरूप है कि अनुपह अनुप है कि आदि अदेव है कि आप अपेव है कि चित्रंग विहीन है कि एक अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक वैब है कि गैब गैब है कि अफवल गुनाह है कि साहान साह है कि कारण कुनंद है कि रोजी देहांत है कि राज करहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पहुन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काज है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र मान्य है सदैवंग प्रधान्य है कि सर्वत्र जापे है कि सर्वत्र थापे है कि सर्वत्र पान्य है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वंग कलीम है कि परमंग फहीम है कि आकल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुसनल वजू है तमामल रजू है हमीसुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमल शिकस्त है गरीबल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाएक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रपुगत प्रवाह है सुजुगत सुधा है सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओअंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनाम्य त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिवाद्ये अगंजे अगाध्ये सुभंग सर्वभाग्ये सुसर्वा अनुराग्ये त्रिभुगत स्वरूप है अचिज है अशुहूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैवंग सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है परम है अकर्म है अनाद है जुगाद है जय है अभय है अभूत है अतूत है अनास है उदास है अतंध है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अदिख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं।

संगताम संगसांत रूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने

इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासवासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी शांत अजय।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते।

के मन वसिया वाजे शब्द कन्हीरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करती रहे। साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जन इच्छा।

गुरते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया, भले से वणजारे, कहे नानक जिन मन निर्मल, सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवे ता सनमुख सिख कोई, जी हो रह गुर नाले। गुर के चरण हृदय ते आई, अंतरात्मा समाले, आप छड सदा रह परने, गुर बिन अवर न जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो हो, सो सिख सनमुख होए, जे को गुर ते विमुख होवे, बिन सतगुर मुक्त न पावे, पावे मुक्त न होर थे कोई, पुछो बिकिया जाए, अनेक जूनी परम आवे, बिन सतगुर मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाख चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो, बिन सतगुरु

तातु जग मह आया, हरा पे माता पे पिता जन जियो पाए जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया, मन चाओ पया प्रभ आगम सुनया, हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर भणया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए, गुर चरण लागे दिन सभागे अपना फिर जा पाए,

परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वड्डियां भागां वाले हो सच्चे पातशाह जी दे पवित्र पावन चरणा कमलां विच बैठ के गुरबाणी पढ़ सुन के लाही प्राप्त कर रहे हो। अज श्रोमणी भगत भगत कबीर साहिब जीयां दा पावन प्रकाश दिहाड़ा है। भगत जीयां दे प्रकाश दिहाड़े दियां आप समूह संगतां नूं बेअंत बेअंत मुबारकां। नाल ही अज शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी दी बरसी दा दिन है अते नाल ही दमदमी टकसाल दे बारहवें मुखी संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां दी वी अज बरसी वाला दिन है। सच्चे पातशाह जी कृपा करन तिन्हां गुरसिखां गुरमुखां दे साधुआं महापुरखां दे पाए हुए पूरनियां ते सानू चलण दा बल बख्शिश करन। सो आप संगतां दे चरणां विच बेनती है। बच्चियां दा समर कैंप कल शाम तों शुरू हो चुकिया है। सो अज सवेरे 6 बजे तों शाम 5 बजे तक रोजाना ही 2 तरीक तक निरंतर बच्चियां दा समर कैंप होवेगा। सो आप संगतां दे चरणां विच बेनती है आप जीआं ने वध चढ़ के अपने बच्चियां परिवारां समेत इस गुरमत समर कैंप दे विच वध चढ़ के हाजरियां भरनियां ता कि साड़ी आने वाली जनरेशन नूं बच्चियां नूं इस गुरसिखी दी फलवाड़ी दे भविख नूं सच्चे पातशाह जी दे दर कर गुर इतिहास गुरबाणी गुर शब्द दे नाल जोड़ सकीए। होइयां भुल्लां दी कृपा करके खिमा बख्शणी। 4 जुलाई दिन शनिवार सवेरे 7 बजे अमृत संचार है। अमृत अबलाखी माई भाई तैयारियां करो कि सी इनान करके 5 प्यारियां दे पेश हो के अमृत दी पावन पवित्र दात प्राप्त करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।

0: नीत रहत है।
1: हम तेसुर हैं परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता मृत हैं,
0: अजवा कृत है, अमृता मृत है, नायक है, खलकायक है,
1: विश्वम्बर है, करणालया है, निर्पनायक है, सर्पायक है,
0: पंजन है, अर्गंजन है, रिपतापन है, जब जापन है,
1: अकलंकृत है, सर्वा कृत है, कर्ता कर है, हर्ता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बस है, जस के जस है,
1: प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य।

0: पास कियो बिख्यान सो बैठ कर ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो
1: काहू पछा को शीस निवायो
0: कुबतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो
1: भगवान को पेट न पायो
0: कुबतान को पूजत है पस को मृतान

0: बड़ बड़ की जन।
1: जब उद कर्क करा कर तारा प्रजा धर तब देह अपारा।
0: कर्क करत हो कबू तुम मैं मिलत दे तर सब हूं।
1: चेते बदन सिठ सब तार है आप अपनी बूझ उचार है।
0: तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अड़ आलम।
1: निरंकार निर्विकार।

ओके, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. ओके, योर कीर्तन क्लास इज नाउ डन, सो इट्स टाइम फॉर यू गाइस टू गो आउटसाइड टू द टेंट फॉर आर्ट. सो रिमेंबर योर ग्रुप्स फॉर टुमारो एंड विल कंटिन्यू ऑफ. वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह.

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपां सारे ही वड्डे भागां वाले हां कि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे चरणां दे विच आपां नूं बैठण दा यह समा मिल रहा। पर सारा महसूस करन ते जे महसूस करांगे कि खंडा ब्रह्मंडा दे मालक जी दे कोल आपां बैठे हाँ, उन्होंने बिठाया ते अंदर जेड़ा खेड़े च जाएगा चढ़दी कला च जाएगा। नहीं महसूस करांगे, नहीं फील करांगे ते आपां उदां ही वॉक करदे आ जांगे ते वॉक करदे बाहर चले जावांगे, कुछ भी फील नहीं होवेगा। हुणे अपने ते आ कि आपां किन्ने किन्ने की फील करना है, किन्ना कसी गेन कीता है अज दिने। अच्छा, ओ बच्चे हाथ खड़ा करियो जिन्हां ने अज आके महाराज जी नूं जदों नमस्कार कीती ते अपना जेड़ा मत्था आ ओह महाराज जी दे चरणां दे नाल छुहाया। कुछ फील होया ही, अगे नालों कुछ वखरा फर्क लगा। पुत हमेशा ही इदां करना है, काली च कदे भी नमस्कार नहीं करनी, मत्था नहीं टेकना, ठीक है। जदों भी महाराज जी नूं नमस्कार करनी है ना, तो बड़े ही प्रेम दे नाल कि महाराज जी दे चरणां दे उत्ते साडा मस्तक आ, ते जिन्हां दा मस्तक महाराज जी दे चरणां नाल छू जाए ना, उस मस्तक च मैल नहीं रहिंदी, उस मत्थे च मैल नहीं रहिंदी, वह मत्था उज्जल हो जांदा, वह मुख उज्जल हो जांदा। आपां श्री जपजी साहिब दे विच आखरी पंक्तियां जपो हां, भला की जपदे हां, आखरी दो पंक्तियां जपो, जिन्नी नानक ते मुख उज्जले, है ना, मुख उज्जले, मत्थे उज्जले, जिन्हां ने नाम ध्याया ते जिन्हां दे उज्जले हो जांदे आ ना, उन्हां दे नाल कई छुट जांदे, कई एक सकेंट ली ना हाथ खड़ा करके उन्हूं संगत चो जी दस्यो भी जिन्हां दे बच्चे इत्थे आए आ ते माता पिता बैठे आ जां घर दे जी वड्डे बैठे, वह हाथ खड़े करियो, किन्ने क जाने, नहीं बच्चे नहीं वड्डिआं ने करना बस, ठीक है। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने ना आपां नूं कल्लियां नूं नहीं तारना हुंदा, साडे मुख इदां दे कर देने हुंदे आ कि साडे राहीं सेवावां लै के केती छुट्टी नाल होना हुंदा, कईआं ने तर जाणा हुंदा। आपां नाल नाल कुछ महाराज जी दे बचन, क्योंकि जिहड़े माता पिता आए आ उहनां नूं जरूर पता लग जे कि बच्चिआं नूं अज की कम मिलिआ आ जिहड़ा इहनां ने अज तों करना आ, घर करना आ। नाल नाल महाराज जी दे बचना दी विचार, बसंत राग दा एक शब्द आ, बसंत की वार तो पहला शब्द, बाणी बसंत की वार उस तो पहला शब्द जे डिस्प्ले करना दे भावे नाल कर दियो। बसंत महला पंजवा,
ਅਨਕ ਜਨਮ ਭ੍ਰਮੇ ਜੋਨ ਮਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ।

0: चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा
1: हमरे दुष्ट बैतम काब हो आप हाते मोहि बचाव हो
0: सुखी बसाय मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा
1: मोर इच्छा निज करते करिए सब बैरन को आज संगरिए
0: पूर्ण होए हमारी आशा तोर पजन की रह प्यासा
1: तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो पर चाहो सो तुम ते पाओ
0: सेवक सिख हमारे तौर यह चुन चुन सत्र हमारे मार यह
1: आप हाते मुझे उभरिए मरण का त्रास नवरिए
0: जो सदा हमारे पच्छा सिरिय सुजु करे और अच्छा
1: राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब।

0: नमस्कार तिसी कहो मारी सकल प्रजाजन आप सवारी
1: शिवकन गोस गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो
0: कट कट के अंतर की जानत पले बरे की पीर पछानत
1: चीटी ते कंचर अस्थूला सपर कृपा दृष्ट कर फूला
0: संतन दुख पाए दे दुखी सुख पाए साधन के सुखी
1: एक एक ही पीर पछान कट कट के पट पट की जान
0: जब अत करख करा कर तारा प्रजा तर्त तब देह अपारा
1: जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलते देह तर

श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक ले त्याय फिर अंगित गुरते अमरदास रामदास होए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जिस दिठ है सब जग जाए तेग बहादुर सिमरिय करनो नदिया वह ताय सब थाई हो सहाय दसवे पातशाह धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हो सहाय दसा पातशाही अधि आत्मिक ज्योत धन सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पाठ दी दर ध्यान तरके बोलो जी पंजा प्यारिया चहो सब जादिया चालियां मुक्तियां हठियां जपियां जिना नाम जपया वंड के छकया देख चलाई तेग वाही देख के अंडट कीता तिना प्यारे सिचियारे दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्म हेत जीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लहाइया झड़खरिया ते तरे चरे चढ़े तन आर्या नाल चढ़ाए गए गुरुद्वारिया दे सेवा

कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकर आखण पाहे, वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना ओह मरे ना होवे सोग, देदा रह ना चूके भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को हुआ ना को होए। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। खसम विसार है तेक मजात, नानक नावे बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जन सतगुर सतपुरखा। बिनो करो गुर पास, हम कीरे किरम सतगुर सरनाई। कर दया नाम प्रगास, मेरे मीत गुरुदेव मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाओ। हर जन के वड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिले त्रिपता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सतसंगत, जित हर रस पाया। मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम। जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए। ताका रिजक आगे कर तरिया, मेरे माधव जी सत संगत मिले सो तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोए न किसकी तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भौ करिया। उडे ऊड आवे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खड़ावे कवन चुगावे, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दास अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल धरिया। जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया। राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा। हर त्यावहो संतो जी, सब दुख विसारण हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडान। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाना। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुर्बान। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुख वासी। से मुक्त भये, जिन हर त्याया जी। तिन टूटी जम की फासी, जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी। तिनका भौ सब गवासी, जिन सेवया मेरा हर जी। ते हर हर रूप समासी, से धन
ਸੇ ਧਨ ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਬਲ ਜਾਸੀ, ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ, ਭਰੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਲਾਹਨ ਤੁਧ ਜੀ, ਹਰ ਅਨਿਕ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤਾ, ਤੇਰੀ ਅਨਿਕ ਕਰਹਿ ਹਰ ਪੂਜਾ ਜੀ, ਤਪ ਤਪਹਿ ਜਪਹਿ ਬੇਅੰਤਾ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪੜ੍ਹੇ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜੀ, ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਖਟ ਕਰਮ ਕਰੰਤਾ, ਸੇ ਭਗਤ ਸੇ

के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मन मुख गवाया तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल जिसनो तू जानाए है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए तू कर कर वेख है जान है सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर वरड़ै भई ले निवासा पानी पावक तिन्हे किया पंकज मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले मन एक न चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संज

चाहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा।

कट कट के पट पट की जाने, जाब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कबहू, तुम मैं मिलत देह धर सबहू, जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै।

बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उतभुज खान बौहर रच दीनी, कहू फूल राजा हुआ बैठा, कहू सिमट भयो शंकर इकैठा, सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अबरच्छा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रणकाता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे।

काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हरि हो, रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई,

उधारो एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो तम संसार चरण लग तरी है सब

छंत महला पहला घर चौथा जिन किया तिन देखिया जग धंधड़ लाया दान तेरा घट चानना तन चंद दी पाया जिन किया तिन देखिया

भला कही है, चोल अमृत पीजे गुणा का हो वै वासुला कडवास लई जाय। आप करे किसे आखी है, होर करे ना कोई आखण ताको जाई है। जे भूलड़ा होई जे होए भूला जाए कही है। आप करता क्यों भुल्ले सुने देखे बाज कहे। दान अण मंगिया दिवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई। आप

जग विधाता नानका सच सोई, आप करे किस आखिए होर करे ना कोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।